0: दिन जस्तो महिनाको पहिलो शनिबार अथवा एक गते आफ्नो स्तनको परीक्षण गराउनु पर्दछ।
1: बुझे डाक्टर साहब, नियमित स्तन जाँच गरौँ। स्तनमा अस्वाभाविक परिवर्तन पाइएमा तुरुन्तै स्वास्थ्य संस्थामा सम्पर्क गरौँ। राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र।
2: हर चेहरे में तेरा अक्स नजर आता, क्या कहें तेरे बारे में, तू हर रूप में खूबसूरत नजर आता।
3: प्रदीप सोनू।